0: तेल दी धार ना देखो क्योंकि तेल बहुत जरूरी है देखना की कहंदे ने थोड़ी जी इन्हां दी भी गलबात सुन लेने आ फिर वापस मिल जाते बाकी दी गल्लां करदे ने।
1: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोना ना खरीदन, विदेश यात्रा घट करन, पेट्रोल घट इस्तेमाल करन, खाने दे तेल दी घट वरतों अते वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करन दे लई लोकां नूं कहा। पीएम वल्लों ए अपील विदेशी मुद्रा बचाउण लई कीती गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एतवार नूं तेलंगाना दे सिकंदराबाद विच एक प्रोग्राम सी जिथे उन्होंने अपने भाषण दे दौरान लोकां नूं ए अपील कीती। प्रधानमंत्री वल्लों सोना ना खरीदण दी अपील मगरों सोमवार नूं गहने वाली कंपनियां दे शेयरां विच भारी गिरावट भी दर्ज कीती गई। पीएम मोदी ने कहा सप्लाई चेन दीआं इन्हां मुश्किलां विचकार पिछले 2 महीनियां तों ही साडे गुआंढ विच इन्ना वड्डा युद्ध चल रहा है। इस दा असर पूरी दुनिया ते पिआ है अते भारत उत्ते तां होर भी गंभीर असर पिआ है।
1: देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है।
2: इस दे नाल नाल प्रधानमंत्री ने लोकां नूं घरों वधेरे काम करन दी भी सलाह दित्ती है ताकि पेट्रोल डीजल दी बचत कीती जा सके। पीएम ने लोकां नूं एक साल लई विदेश यात्रा ना करन दी भी अपील कीती।
1: वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री ने किसानों को भी देश हित विच योगदान पाउण लई ए अपील कीती है।
1: बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री वल्लों लोकां नूं कीतियां गईयां अपीलां मगरों कांग्रेस समेत देश दीआं होर विरोधी पार्टियां ने सवाल चुके ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा प्रधानमंत्री नूं सच बोलना चाहीदा है।
3: मतलब देश नूं सच बोलना चाहीदा, जे प्रधानमंत्री साहब तों उम्मीद करदे आ लोके सच बोलो। प्रधानमंत्री जे कह रहे हैं हुण पता नहीं हो किते थालियां तालियां दा ना आ जाए किते प्रमाण भी थालियां बजाओ तालियां बजाओ तां जंग रुक जूगी। सो जे यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं तो यह जंग दे विच भी गल कर लैन। वाशिंगटन दा तो डीसी तो ट्रंप तो पहला कर देंदा है ट्वीट, जो साडे देश का फैसला होंदा है वह फैसले का जिहड़ा अद्धा घंटा पहला ट्रंप ट्वीट कर देंदा है कि मैं भारत ते पाकिस्तान की लड़ाई बंद कराती, आपां बाद च करदे आं। तो देश कित्थों चल रहा है, आपां तां विश्व गुरु बनने चले सी, इह विश्व चेले कदों दे बन गए।
2: कांग्रेस दे सीनियर आगू अते सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये नाकामी दे सबूत ने। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट उत्ते लिखिया कि 12 साल विच देश नूं इस मुकाम उत्ते लिया दित्ता है कि लोकां नूं दसना पै रहा है कि की खरीदना है की नहीं खरीदना, किथे जाना है अते किथे नहीं। हर वार जिम्मेदारी लोकां उत्ते पा दिंदे हन तां कि खुद जवाबदेही तों बच निकलण। समाजवादी पार्टी के मुखी और यूपी के सबका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट उत्ते लिखा कि चोणा खत्म होंदिया ही संकट याद आ गया, ये पाबंदियां चोणा तो बाद ही क्यों याद आईया हैं। इस तरह की अपील नाल तां व्यापार कारोबार बाजार विच मंदी जां महंगाई की आशंका की वजह नाल डर दे नाल घबराहट बेचैनी निराशा फैल जाएगी।
0: ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ

0: उस शहर में पहुंची बीबीसी की टीम जहां से चला था वो क्रूज जिसमें मिले हंता वायरस के केस। जानेंगे क्या यहीं से फैला होगा वायरस। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में चार दिन तक चले सैन्य संघर्ष के एक साल बाद। दिखाएंगे पाकिस्तान के उन जगहों से रिपोर्ट जहां भारत ने किए थे शुरुआती हमले। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका और ईरान के बीच जंग को खत्म करने के लिए लेकर चल रही कोशिशों से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से आए जवाब को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए ईरान को एक प्रपोजल दिया था। ईरान की मीडिया के मुताबिक इसके जवाब में अमेरिका से मांग की गई थी कि वो उनके सारे बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी हटा दे, साथ ही गारंटी दी जाए कि अब ईरान पर और हमले नहीं किए जाएंगे। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये पसंद नहीं आया, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी। और रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकिया ने एक्स पर लिखा था कि हम कभी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाएंगे, अगर बातचीत या समझौते पर कोई बात होती है तो इसका मतलब सरेंडर या पीछे हटना नहीं है। और इसराइल की ओर से भी इस पूरे मामले में प्रेशर बनता दिख रहा है। अमेरिका में सीबीएस न्यूज से बात करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फिर कहा कि ईरान के पास जो एनरिच किए गए यूरेनियम का जखीरा है, जंग खत्म होने से पहले उसे अपने कब्जे में लिया जाना चाहिए।
1: ये अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी न्यूक्लियर मटेरियल एनरिच किया गया यूरेनियम है जिसे ईरान से निकाला जाना है। ऐसी कई जगहों को भी नाकाम करना बाकी है जहां ये एनरिच किया जा सकता है। ईरान की मदद पाने वाले कई प्रॉक्सी अभी भी मौजूद हैं। वो कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना चाहते हैं। हमने इसमें से काफी कुछ कम किया है मगर बहुत कुछ अभी बाकी है।
0: तो अभी जो सीज फायर चल रहा है उसका मकसद है जंग को खत्म करने के लिए बातचीत हो। ये सीज फायर एक तरह से बरकरार तो है लेकिन क्या इसके टूटने का भी खतरा है, बता रही है बीबीसी संवाददाता कैरोलिन डेविस।
2: इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान राजी नहीं हुआ तो हो सकता है कि अमेरिका फिर से बमबारी करने लगे और वो भी पहले से ज्यादा। हालांकि पिछले हफ्ते हमें व्हाइट हाउस से ये पता चला कि राष्ट्रपति ट्रंप डिप्लोमेसी को लेकर काफी संजीदा हैं। तो सवाल ये है कि अब हालात कैसे हैं? ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष बोल चुके हैं कि वो स्थिति गंभीर कर सकते हैं, दोनों ही खुलकर अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। तो फिर नेगोशिएशन के लिए कितना स्पेस बचा है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि दोनों पक्ष आगे क्या करेंगे।
0: और हंता वायरस पिछले हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ है। एक क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस में इसका संक्रमण फैला जिसे लेकर प्रशासन लगातार हॉन्डियस से यात्रियों को निकालने का काम कर रहा है। इस क्रूज पर मौजूद एक फ्रांसीसी नागरिक इस वायरस से संक्रमित पाया गया। अमेरिका में भी एक नागरिक वायरस के एंडीज स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है और दूसरे में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस बीच जहाज पर सवार ब्रिटिश यात्री ब्रिटेन लौट आए हैं और एक अस्पताल में आइसोलेशन में है। कैसे चल रहा है इस वायरस से बचाव का काम, ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफोर्ड।
3: वो किनारे पर पहुंचने के लिए बेकरार थे। एमवी हुंडियस में सवार पहले शख्स की हंता वायरस से मौत होने के कई हफ्तों बाद आखिरकार रविवार दोपहर को ब्रिटिश यात्रियों को उस क्रूज से निकाला गया। खास कपड़े पहनाकर उनके सामान को लपेटकर उन्हें बस से सीधा एयरपोर्ट पर ले जाया गया। इसमें से किसी भी ग्रुप में वायरस के कोई लक्षण नहीं थे। थम्स अप और उनके वेव करने के तरीके से ये पता चलता है कि वो ठीक हैं। ये प्लेन खास तौर पर इन्हें घर ले जाने के लिए लाया गया था। टेनेरिफ में चल रहे इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में 23 देश शामिल थे। सुबह होने से पहले ही एमवी हुंडियस आइलैंड तक आ गया था लेकिन सावधानी बरतते हुए समंदर में ही रहा। अपने रेस्क्यू का इंतजार कर रहे यात्री दिन निकलते ही खिड़कियों पर आ गए। हालांकि इस रेयर वायरस के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सबसे पहले डॉक्टरों की टीम इस क्रूज में दाखिल हुई। तो इस तरह एक और नाव हुंडियस से यात्रियों को लेकर किनारे की ओर जा रही है। आप उन्हें उस नाव के पिछले हिस्से पर नीली लाइफ जैकेट पहने देख सकते हैं। ये सब बहुत धीमा रहा है क्योंकि यहाँ हर चीज की तरह इसमें भी बहुत सावधानी बरती जा रही है। यात्रियों को हुंडियस से तभी उतरने की इजाजत दी गई जब हवाई अड्डे पर जहाज उन्हें लेकर तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया।

0: हंटा वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती जा रही है।
1: This is not another COVID.
2: ये दूसरे कोविड की तरह नहीं है। लोगों को इससे खतरा कम है, इसलिए लोगों को डरना और घबराना नहीं चाहिए।
0: लेकिन अटलांटिक से कोसों दूर ब्रिटिश आर्मी की मेडिकल टीम दूर द्वीप पर फंसे एक शख्स की मदद के लिए पैराशूट से उतरी। वो MV होंडियस पर सवार थे और अब उनमें वायरस के लक्षण दिख रहे हैं। जो सामान उन्हें पहुंचाया गया उसमें ऑक्सीजन भी थी, क्योंकि आइलैंड पर इसका स्टॉक कम है। दूसरे ब्रिटिश यात्री उत्तरी पश्चिम इंग्लैंड पहुंच गए हैं। उनकी जांच की जा रही है और वो 3 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहेंगे, जिसके बाद वो घर पर खुद को सेल्फ आइसोलेट कर पाएंगे।
3: स्पेशल मेडिकल टीम हर समय उनके साथ मौजूद है। वो अगले 72 घंटों के दौरान आकलन करेंगे और इसके बाद किसी भी समस्या का समाधान करने की तरफ बढ़ेंगे।
0: इन्हें रेस्क्यू करने वाला प्लेन रविवार को उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में लैंड कर गया। BBC संवाददाता सारा रेंसफर्ड की रिपोर्ट।
4: और MV होंडियस ने 1 अप्रैल को लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना से अपना सफर शुरू किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले पैसेंजर जिनके हंटा वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हुई थी वो अर्जेंटीना के शहर उशुआया से क्रूज पर गए थे। पर वायरस कहां से आया, लोकल अथॉरिटी अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। BBC संवाददाता मैथियस जुबेल वहीं पहुंचे जहां से इस क्रूज ने अपने सफर की शुरुआत की थी।
2: ये अर्जेंटीना के एकदम दक्षिण में मौजूद उशुआया शहर है, जिसे अक्सर दुनिया के आखिरी छोर पर बसा शहर कहा जाता है। यहीं से MVS होंडियस नाम का क्रूज 1 अप्रैल को अपने सफर पर निकला था और आशंका है कि हंटा वायरस का इन्फेक्शन भी यहीं से क्रूज पर पहुंचा।
5: This dock attracts thousands of cruise ship tourists.
2: इस डॉक पर हर साल हजारों टूरिस्ट अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर के दूर दराज आइलैंड्स की यात्रा करने आते हैं। वायरस इस क्रूज तक कैसे पहुंचा, ये अब भी एक रहस्य है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रांत में इस वायरस का कोई मामला नहीं है। यहाँ आए पर्यटकों का कहना है कि क्रूज पर हंटा वायरस का इन्फेक्शन भी उन्हें ट्रिप जारी रखने से नहीं रोक सका।
6: हमने दोबारा इस बारे में सोचा था, लेकिन जब हमें पता चला कि ये वायरस आसानी से नहीं फैलता और ये समस्या सिर्फ उस क्रूज में मौजूद लोगों तक ही थी, तो हमने तय किया कि यहाँ आना सेफ है।
7: हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा कि क्या यही वो जगह है जहाँ हंटा वायरस फैला है, लेकिन हमने ब्यूनस आयरस में कुछ लोगों से बात की और वो इस बात से ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिखे।
2: जिन लोगों में सबसे पहले लक्षण दिखाई दिए थे उनकी मौत हो चुकी है, इसलिए स्थानीय अधिकारियों के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि वायरस क्रूज तक पहुंचा कैसे। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे लैंडफिल्स की ओर इशारा किया गया है जहां टूरिस्ट्स बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं और हो सकता है कि यहां उनका सामना वायरस से संक्रमित चूहों से हुआ हो। उशुआया के कुछ लोग नाराज हैं कि संक्रमण की शुरुआत यहां से होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में आज तक हंटा वायरस का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।
8: सबसे ज्यादा संभावना यही है कि टूरिस्ट अपना सफर शुरू होने से 2-4 हफ्ते पहले अर्जेंटीना के उत्तरी पैटागोनिया क्षेत्र में इस वायरस के संपर्क में आए हों, जहां ये बीमारी अक्सर पाई जाती है।
2: अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्रालय ने BBC से कहा कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि संक्रमण उसी प्रांत में हुआ हो जहां उशुआया है। आगे की जांच के लिए ब्यूनस आयर्स से साइंटिस्ट की एक टीम भेजने की तैयारी की जा रही है। BBC संवाददाता मैथियस जिबेल की रिपोर्ट।
9: सो ये सी जी कुछ हंटा वायरस ते नाल दी नाल ही तुसी ईरान ते US दी गल्लां पता सुनिया कि कुछ इन्हां दे हालातां दे विच चल रहा ते प्रोग्राम दा समां जिहड़ा है क्योंकि वह थोड़ा रहिंदा तुहानू पता भी 1 घंटे दा प्रोग्राम हुंदा इहदे च वख-वख गल्लां पता ते खबरां करनी हुंदियां नाल दी नाल ही क्योंकि शनिवार वाले दिन विसाखी मेला होने जा रहा जैनसी सेंटर के अंदर तो तुसी पहुंच के हाजिरी लवानी है। फ्री एंट्री फ्री फूड ते काफ़ी कुछ इत्थे गल्लां बातां तुहानू देखन नू मिलेंगे जिदे विच मैनू लगदा भी मैं बोल के दसन नालों ज़्यादा थोड़ा जिहा मैसेज के थ्रू सुना दिंदे आ ते फिर आपां अपनी गल्लबात जिहड़ी अगे वधाउंदे आ। इस मैसेज तो
10: कैलगरी वाले साल के सब तो वड्डे जश्न लई तैयार हो जाओ। असी तुहानू 13वें सालाना विसाखी मेले 2026 विच सद्दा दिंदे होए बहुत खुश हां। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक विशाल बहुत सभ्याचारक मेला है।

0: ਫਿਊਚਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਮੀ ਨੂੰ 403-617-2111 ਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-479-7007 ਤੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ।
1: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां ले पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनिया नाल काम करदे हन। होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़। आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कैलगरी में मौसम फिर से चेंज होता हुआ, लेकिन अगेन हवाएं थोड़ी ठंडी हैं, तो अभी मौसम का मिजाज कुछ डिफरेंट है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें और स्पेशली अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। एकदम से ठंड हो जाती है रात को, जैसे अब फील्स लाइक 1 है, लेकिन मॉर्निंग में 7, आफ्टरनून में 24, फिर इवनिंग में 21, फिर ओवरनाइट 5-6 हो जाता है। वेडनेसडे को बारिश है, थर्सडे को अगेन बारिश है, और फ्राइडे को बारिश है फिर से, और सैटरडे संडे फिर से बारिश है। तो प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखें और गाड़ियां बहुत ध्यान से चलाएं। कोशिश करें आपके जो ऑल सीजन टायर्स हैं वो अगर वापस आ गए हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अपनी जो आपकी ब्रेकिंग है वो प्रॉपर हो रही है, क्योंकि अगेन इंसान जो है वो विंटर से समर सीजन आने में कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाता है। तो उसके लिए प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखें, और स्पेशली जब गाड़ियां चलाते हैं तो उसका विशेष ख्याल रखें। गर्मियों का मौसम, इसका मतलब कैलगरी में स्पेशली वी आर गेटिंग सम अमेजिंग इवेंट्स, और उसमें सबसे आगे रहते हैं सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी, जो आपके लिए विशेष रूप से लेके आते हैं भारतीय क्लासिकल म्यूजिकल म्यूजिक के प्रोग्राम, डांस के प्रोग्राम, जो कि हमें अपनी सभ्यता का साथ जोड़ते हैं, हमें अपने कल्चर के साथ जोड़ते हैं और हमें अपने संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। तो सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी पिछले बहुत सालों से कैलगरी के अंदर इस सेवा में लगी हुई है और उनका साथ दे रहे हैं मंत्रा आर्ट्स, और आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम जिसका नाम है मोमेंटम, जो कि होने जा रहा है सोमवार 18 मई, वेन्यू है एटको परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, शाम को 4 बजे। और उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं 3 गेस्ट हमारे, भाई हरजीत सिंह जी, जरमजीत सिंह जी और कुलभूषण जी, जो हमें बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है और क्या क्या इसमें होने वाला है। पाजी, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में, कुलभूषण जी बहुत बहुत स्वागत।
3: थैंक यू।
2: तो बात शुरू करते हैं, आज हरजीत जी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और कुलभूषण जी पहली बार आए हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उनका विशेष रूप से स्वागत। और कुलभूषण जी क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि ये क्या है और क्या होने वाला है इसके अंदर?
3: तो नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम कुलभूषण टुल्लू है, मैं मंत्रा आर्ट्स सोसाइटी ऑफ कैलगरी का कमेटी मेंबर हूं और उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं आज हरजीत जी के साथ। हरजीत जी तो सर्वकाल के, उन्हें तो कौन नहीं पहचानता कैलगरी में
2: जी।
3: तो इस वजह से मैं आया हूं कि सर्वकाल के सपोर्ट लेके मंत्रा आर्ट्स ने ये साल जून में, मई में, 18 मई को एक बहुत ही बढ़िया क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस रखा है एटको सेंटर पे, जैसे आपने बताया। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इसमें हम इंडिया के बहुत मशहूर 3 आर्टिस्ट को ले आ रहे हैं
2: जी।
3: तो एक तो वोकलिस्ट है
2: जी,
3: पंडित प्रसाद खापरडे जी,
2: जी।
3: उनके साथ हारमोनियम पे हम ला रहे हैं अभिनय रवांडे जी को
2: जी,
3: जो लास्ट ईयर 2 बार आ चुके हैं कैलगरी में।

0: क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ये इस चीज से पीछे हट जाएंगे तो हमारे बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि कोई और म्यूजिक को सुनना गलत है, लेकिन अपनी जो पिछोकड़, जैसे कि जनजीत सिंह जी ने कहा कि जो पिछोकड़ है, जो हमारा विरसा है, जो हमारा संस्कृति है, उसके साथ अगर हम नहीं जोड़ेंगे अपने बच्चों को तो कहीं ना कहीं वो भी बेचारे भूल जाएंगे। बच्चों की कोई गलती नहीं होती, वो तो एक खुली किताब होते हैं, एक स्लेट होते हैं एक तरह से, उस पर आपने जो लिख दिया पेरेंट्स ने या उनके आसपास लोगों ने, वो उस पर लिखा जाता है। तो ये हमारा फर्ज बनता है एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज आंट्स, एज अंकल्स, एज फ्रेंड्स, कि हम उनको इस संस्कृति के साथ जोड़ें। मैं अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा कुलभूषण जी से। कुलभूषण जी, मंत्रा आर्ट्स जैसे मैंने बोला कुछ टाइम से बहुत अग्रसर हुआ है और इसके अंदर काफी इस स्पेशली इस दौड़ में कि हम अपने बच्चों को, अपने जो कैलगरी वासी हैं उनको इस संस्कृति से जोड़ें, आप लोगों को क्या ख्याल आया? क्योंकि अगेन मैं अगर भाई अजीत सिंह जी की बात करूं, उनको तो मुझे जानते हुए बहुत टाइम हो गया और वो इस सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया?
1: जैसे थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, आई कैन टॉक इन इंग्लिश।
0: जी जी, ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज।
1: सो मंत्रा आर्ट्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जून लास्ट ईयर, सो वील बी कम्प्लीटिंग आवर फर्स्ट ईयर।
0: जी जी, वही मैंने कहा, बहुत अभी रिसेंटली
1: एनिवर्सरी।
0: जी,
1: so this is a big event for us to host for our anniversary.
0: Ji.
1: And the main purpose of Mantra Arts was to promote Indian languages, all kinds of languages, whether it be Marathi, Tamil. We are also providing platform for Sanskrit, you know, all these types of, where we provide opportunities for younger generation to connect with teachers,
0: right,
1: in music,
0: Ji,
1: arts, dance, and you know, all the cultural events.
0: Ji.
1: Besides that, we are also undertaking performances, organizing performances, mainly promoting local talent.
0: Ji.
1: And there is a wealth of local talent in the younger generation here, which we are trying to provide a platform for,
0: Ji,
1: and promote.
0: Ji.
1: So this is basically our endeavor, to continue doing that. But at the same time, we would like our younger generation, as well as the Indian people, diaspora over here, to get exposed to the Hindustani classical arts and dance events. And this is one of our classical music events, vocal classical event. So just to talk about momentum for a minute, these three great artists are going to perform this event in memory of Padma Shri late Ustad राशिद खान साहब।
0: अच्छा।
1: तो उनकी गायकी जो श्री पंडित प्रसाद खापरडे जी में उतरी हुई है, क्योंकि उनके शिष्य रह चुके हैं कई साल से,
0: जी,
1: तो वो उनकी राग गायकी प्रस्तुत करेंगे और उनके साथ एकम्पेरियन पे हारमोनियम और तबला पे जो दो आर्टिस्ट है वो करेंगे। तो ये मेनली इवेंट जो है वो उस्ताद राशिद खान साहब के मेमोरी में रखा गया है, और खास करके बताना जरूरी है यहाँ पर कि ये तीनों आर्टिस्ट महाराष्ट्र के हैं। इस कारण हमने इनको रिक्वेस्ट भी की हुई है कि काफी सारा ऑडियंस हमारा जो हो सकता है कि महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन भी होंगे, क्योंकि वो भी काफी जानकारी रखते हैं इनके बारे में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग महाराष्ट्रियन ऑडियंस टू, सो टू केटर टू दिस ऑडियंस एज वेल, for some time we are going to request these artists, and they have agreed to perform Marathi semi classical performances,
0: like
1: Abhang or Bhav Geet, you know, those Marathi songs, so that will cater to our Maharashtrian audience as well. So I would encourage even the Maharashtrian audience to join this event and bring their kids as well.
0: Of course Paji, appa hun gal karde ha मराठी दी, गुजराती दी, पंजाबी दी, आई थिंक म्यूजिक दी कोई लैंग्वेज नहीं हुंदी, राइट? तो थोनू किन्ने साल हो गए? मैं तो मतलब कि थोड़े सामने बहुत न्याणा हैगा, मैं एज दी तो गल नहीं करदा बट इस एक्सपीरियंस च मैं थोड़े सामने बहुत निमाड़ा जा बंदा हैगा। थोनू इन्ने साल हो गए म्यूजिक दी सेवा करदे हुए, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक की सेवा करते हुए, थोनू की लगता है कि जे अपा जिवें हुण कुलभूषण जी ने कहा, जे हुण मैं पंजाबी हाँ, मैं उत्थे आना
2: जी,
0: क्योंकि लोग ये कहने के यार मराठी म्यूजिक होएगा मैनू की समझ आऊंगा, तो तुसीं की कहना चाहोगे कि अपा पंजाबी हुंदे हुए भी या अपा नूं उह लैंग्वेज नहीं भी समझ आउंदी, अपा उहनूं समझ सकदे हां?
2: हाँ जी, बहुत अच्छा तुहाडा क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ

0: सुरों की बारिश का, जैसे भाजी ने कहा सुरों की बारिश का, इन ताल की बारिश का जिसमें तबला हारमोनियम और जितने भी साज हैं उनका जो बारिश होने वाली है उसका आनंद लें, वहां पर बैठें। दोस्तों YouTube पे आप कहते होंगे YouTube पे भी सुन लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, या CD पे सुन लिया या रेडियो पे सुन लिया। ट्रस्ट मी प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे बेनती करूंगा, लेकिन जब आप सामने बैठते हैं ना जिस पे लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आप किसी और दुनिया में चले जाएंगे, अपनी परेशानियों के लिए कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन मोमेंटम जो कि होने जा रहा है 18 मई 2026 को, बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम, हरजीत पाजी आपकी तरफ से क्या गुजारिश या आपकी तरफ से क्या संदेश है लोगों के लिए?
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो सानू सारे ने इत्थे बुलाउण वास्ते, नाल ही जिन्ने भी श्रोते इस प्रोग्राम नू सुन रहे ने उन्हां नू सारे नू बेनती है, रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम दे विच अपनी हाजरी जोड़ दवाओ तां कि जिहड़े आर्टिस्ट साडे शहर च बाहरों आउट ऑफ कंट्री तो आ रहे ने उन्हां नू पता लगे कि असीं कैलगरी गए सी ते उत्थे सानू इदां दी ऑडियंस जिहड़ी है उह मिली ते साडी जिहड़ी परफॉर्मेंस सी उन्हां ने सुनी ते उहदा आनंद लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜਨਜੀਤ ਜੀ।
2: ਜੀ ਸੇਮ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਫੋਰ ਸੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਫੋਰ ਦਾ ਸੋਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜੀ।
3: मैं भी वही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कैलगरी ऑडियंस टू प्लीज जॉइन अस दैट इवेंट एंड मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस, सो इट विल इनकरेज अस टू अंडरटेक सिमिलर इवेंट्स इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। आणि महाराष्ट्रीयन ऑडियन्ससाठी मी मराठी थोडं बोलतो, तर तुम्ही जरूर या, सर्वांना घेऊन या, तुमच्या मुलांना घेऊन या, हा कार्यक्रम नक्की तुम्हाला आवडेल, तुमच्या लाइकिंग
0: करना है तो प्रयत्न करूं। थैंक यू। क्या बात है। सो दोस्तों जरूर यहां पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज का प्रोग्राम एनपावर किया है YYC होम केयर ने, जिनका मानना है कि होम केयर सर्विसेज केयरिंग फॉर यू राइट एट होम। अगर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो इनको कॉल कीजिए 8257600983 पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
4: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदे ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
5: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते, पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो, तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
6: अपने घर दा दूजा ना आया सुकून, ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
7: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
6: वधिया घर खरीदना है, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तो भी बचना, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
7: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
6: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
7: भरोसे जो ਯੋਗ ਰਿਐਲਟਰ।

पाकिस्तान को चीफ मिनिस्टर के रूप में बताया गया, दिखाया गया, दर्शाया गया और उन्होंने बहुत क्रांति लाई अपनी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर बनके। सेम वे एक मूवी स्टोरी ही लगती है कि साउथ इंडियन मूवी के सुपरस्टार मिस्टर विजय, जिनको तलपति विजय कहा जाता है, वो पहली बार इलेक्शन में लड़े और अनबिलीवेबल बात कि वो इस समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। एक कह सकते हैं फिल्म की कहानी या एक ड्रीम जो इंसान देखता है कि मैं फिल्मों में सुपरस्टार रहा हूं और मैंने बहुत बार प्ले किया है रोल चीफ मिनिस्टर का या ऐसे नेता का जो कि क्रांति लेके आता है अपने स्टेट में और लोगों के भलाई के लिए काम करता है। तो आज वो एक दृश्य जो है वो देखने को मिला तमिलनाडु में, जहां पे सुपरस्टार विजय इस समय माननीय चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आया दोस्तों वो ये कि उनके जो एमएलएज हैं, 107 एमएलए जो कि उनकी पार्टी टीवी के हैं उसके थ्रू जो बने हैं, जो जीते हैं, उसमें से 22 इंजीनियर हैं, 18 लॉयर्स हैं, 12 ग्रेजुएट्स हैं, मतलब कि उन्होंने कोई स्पेशलाइज डिग्री नहीं ली बट ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 13 हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन पे ही रुक गए लेकिन जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी, पीएचडी 6 एमएलए ने करी है, आईआईटी में से 5 पास हैं, 8 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अब 16 एमएलए 12वीं पास है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जो कि अंगूठा छाप। बाकी काफी पार्टियों में देखने को मिलता है कि जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जो जेल में होते हैं या अपराधी होते हैं वो भी जीत जाते हैं इलेक्शन जेल में बैठे बैठे ही, लेकिन टीवी के ने ये स्पेशली एक कह सकते हैं एक चलन को अंजाम दिया कि जहां पे पढ़े लिखे एमएलए जो हैं वो सत्ता में आए हैं और अब ये देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है और किस तरह से ये जो टीवी के है ये अपनी स्टेट तमिलनाडु के लिए काम करता है। आप सुन रहे रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है और फिर गाने के बाद दोबारा मिलते हैं। सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर।

0: Most of Sursangam, I started in 2017, तो 8 साल हो गए यहाँ पर मेरे को प्रोग्राम्स करते हुए. ये आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है, आपका आपकी मोहब्बत है, आपकी सपोर्ट है कि हम अभी तक ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आपसे मुलाकात होती है अगले सोमवार. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें. आज का प्रोग्राम एम्पावर किया YYC होम केयर सर्विसेज ने, जो कहते हैं डायरेक्ट क्लाइंट डायरेक्टेड होम केयर इन्वॉल्विंग प्रोग्राम लाइक CDHCI. YYC होम केयर कैन डायरेक्ट बिल HS फॉर योर अप्रूवल सर्विसेज थ्रू द अल्बर्टा ब्लू क्रॉस पोर्टल विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू. आप जरूर उनसे बातचीत करें 8257600983 पे. तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड नाइट.
1: जिंदरा मैडम, आ मेरा भतीजा, आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है.
2: ओ तू सारा टब्बर इकट्ठा करी फिरदा है?
3: ओ पाजी, ये असी नहीं, JFS इमिग्रेशन वाले ने इकट्ठा करके दिता है. JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स. कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004.
4: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया.
5: की होया?
4: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन.
5: ओहो, रह गए ना फिर पिछे. मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है. तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको. फोन नंबर है मानस अहूजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001. सोनिक इंश्योरेंस.
6: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुन कनाडा दे विच तुहाडे सपने सच होण दा समा आ गया.
7: कनाडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल. पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम. सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757.
6: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स.

0 जहां आओ यूनिट 530669 स्वाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलानू कैद करते हुए एक फोटो एक वार

0: ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदे ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पूछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हैं। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जा आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करते हुए एक फोटो एक वार।
0: अपने घर का दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
3: घर खरीदने तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
0: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
3: सिर्फ घर खरीदने ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
0: घर खरीदने ते बेचने लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
3: भरोसेयोग रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
0: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
3: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
4: रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम ते जी स्टेशन आईडी दी ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है प्रोग्राम विच। असी काफी सारियां खबरां अजे सांझे करनियां ने, एक गलबात भी थोड़ी पंजाब दी राजनीति बारे पत्रकार हमीर सिंह होरां दे नाल जिहड़ी होणी है जी ओह सांझी करांगे प्रोग्राम विच। अगे चल के दस दईए कि प्रोग्राम दे स्पोंसर ने जी सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा। मानस होरां दा दावा है कि अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस दे अगर तुसीं वधिया रेट लैणे ने ते साडे नाल संपर्क कर लो सोनिक इंश्योरेंस नाल 587-832-1208। मानस पहुजा सोनिक इंश्योरेंस दा फोन नंबर 587-832-1208। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल तो गौरव शर्मा होनी प्रोग्राम दे स्पोंसर ने जी 403-903-5757 उन्हां दा फोन नंबर है। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स जो कि कनेडा दी सब तो वड्डी डीलरशिप है ते गौरव शर्मा उत्थे सीनियर सेल्स परसन ने जी। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ 403-404-3500 YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 825-760-9983 समोसा हाउस इंडियन रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच समोसा हाउस और इना ब्लॉक खोलिया गया है मदर इंडिया रेस्टोरेंट इंडियन ते नॉर्थ ते साउथ इंडियन कुजीन है जी। हर तरह का फूड 24 घंटे 7 दिन खोलन वाला है रेस्टोरेंट मदर इंडिया रेस्टोरेंट। इन्हों का फोन नंबर है 403-464-4 403-461-6161। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार दे विच है जी जिथों कि सिर्फ $7 दे विच दो पासपोर्ट साइज फोटो ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ OCI ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 403-947-0060। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ $10 ਦੇ